अंतर्जामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, आप जी के पावन स्थान सत्खंड दरबार दी भरते हुए आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत प्रमुखा प्यार माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम नाम सिखी दान दे बख्शिश करने गुरु सिखी जीवन बख्शो नाम दे आरोपता समूह संतान मनोकामना पूर्ण करने नाम वाणी नाल प्यार चुनाव निधर प्रवान करनी यात्रा सफल करनी।

कने रे सचिया बाद जा बिन से बाप घने रे पैसी पारे ता मगर दे कोई तारे

और होश में से मिलेंगे फुट गई सभा मलेच की करकुड़ा पसार डंका बाजे पते काने कंकार चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्रवर्ती सेवम भव समंग सरदास भुक्ते काल प्रणासी दयालन स्वरूपे सदांग संगे अवंगन देखते गोपधन सत्पे दृंग्या पदस नानक गुरु गोविंद सिंह जी सरकार भूमि सहाय दरबार में तेरु दरबार सत्कर्म से निरंकार लक्ष्मी खड़ी दरबार सर्वदेव

0: अमेरिका के बिना के निकट हो कब के बाबो बाबो कब के मन का मिटा कर से हम की हो बंद हो कब धर्म धानी का उत्सव ठार कभी का हो जाति का हो काली का हो जेत का हो जेत हो जेत वेद वेद का हो परित का हो परित का हो जेत का हो सारी जेत का मित्र हो प्रथम जेत का हो परित का हो जारी का हो जो सारी का हो सारा पता कर तो हो ताति का हो ताद फाद का हो जो हो पता के का हो भूख पाव के हो प्रचार का धन भूख हो सात धन सिखाए हो के सात सिंहासन कमाए हो के हो छत के क्या है मारा मारा हो
1: I'm not going to be able to do that.

वेद पुराण कतेब कुरान अभे निरपाय सब अपज हारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे आदे अनादे अगाध अभेग अभेग जप तिन्ह कुल तारे तीरथ कोट की एशना दिए वदान महाव्रत धारे देश प्रयोग कर भेष तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे

अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरैया छत्र धरे के चलैया माँ सतरन के साल हैं। दान के दिवैया माँ मान के बड़े अवसान के दिवैया कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया वृद्ध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मान हुके मान हैं। ज्ञान हुके दाता ज्ञान हुके ज्ञाता महा बुद्धता के दाता देव काल हुके काल महा काल हुके काल है। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे अरब के अरबी अराधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जे काम है। मराठा मंगले तेरी मन सो तपैसा करे दड़वै तलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेरे हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रो के रोहिले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पापुन को पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस नी आवे तिब्बती ध्याय दो दे के दलत है। जिने तो है ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव तान को श्रेय दान वान को महत गंग दान को अभेद कहियत है। रंग में रंगीन राव रूप में प्रवीण और कहूं पे न अधीन साथ अधीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार कहियत है। हाथी की पुकार पाले पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्रद्वार किते ब्रह्मा में उचार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महाधीन किते व्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जाति कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाइये न पार ते पार अपार कह बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी मां रूप होके राशि है नासी कह के मानिए। जंत्र हुना जा की बाप हुना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा के अनमानिए। तेज हुको तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानिए। तेज हुको तरह के राशि को सारे के शुद्धता घर के शुद्धता की सार है। कामना की खाने के साधना की सहने के भ्रक्ता की बाने के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हुको रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारे के साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विबोध के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है। काम को खुनिंदा के खुबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल के सतरन के साल के मित्रन को भोगत के वृद्धता की वासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटैया कामना कर है। त्रेज को प्रचंड है खंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है। पाइये ना पार पारा बार हुको पा जा को कीजा विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हब सी हल्बी धावे पूर्वी ना पावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है। देवन को देव माँ देव हु के देव है निरंजन अभेव नाद अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवका धीने कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हु के देवनाथ भूमि के भुजिया मुहिया मह बाल के। राजन के राजा महा साज हु के साजा महा जोग हु को जोग है धरिया ध्रुम छाल के। कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के। शीर कैसी शीरावत छाछ कैसी छतरा ने छपा कैसी कैसी छाप कालिंद्री के कुल के। हंस निशी सिहार हूँ हुरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। परासी पलाव गोर पलासी पलाव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंग बानी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रतिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कलाज कमाव गण काशीपुर सी सासी सुरंगावानी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हाव सी हल्लब्बा नेर हंस कैजी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रवासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार विकान सी बुलंदाबाद की रतिहारी की उजियारी सोहियत है।
फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है। बखरी खंदारी गोर गखरी कर दे चारी पौन के हारी तेरो नाम थी आयत है। पूरा पलाव काम रूप कमा सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाइयत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ की रति हारी को ना पार पाइयत है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अदवै अनास आसन अटोल अदवै अनत उपमा तो अच्छा स्वरूप अव्यक्त नाथ आ जान पाओ सर्वंग प्रमाद। जत महीप बंतन प्रफुल्ल शोभा बसन जहत प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान। जत प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुलतंग प्रफुल्ल।

रोसं ब्रज करुणा निधान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान बन तन महीप जल थल महान जाता प्रसो करुणा निधान जगमगत तेज पूरन प्रताप अंबर जमीन जह जपत जाप सातो आका सातो पता।

दिवस रात दोय दाए दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हादू करनी आप।

जी गुरु गरीब निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरी अपन गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेनती मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु जी आप नाम जन कृपा मेरे मत बख्श देव का नाम दीदार करके याद।

भई परापत मानख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कतै नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। शरण जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म नाक माया,

महा मूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का छीनत नह भिव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्वज खान बहर रच दीनी। काहूं फूल राजा हुए बैठा, काहूं सिमट भयो संकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे अस दुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताकि काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर। हाँ रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छय सकै न कोई। एक बार जिनत मैं संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैल हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख त

दुष्ट दुखियन को छय करता श्री अद्भुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख नाथ सह ब्यापत

मुख चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादौ सुदी अष्टमी रववारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र

धर्म जुद्ध के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे। देह

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बा स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल हुई आद ब्याह छय सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर

तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो श्री अस पान कृपा तुम री कर मना कहो सब तोहे बखान्य दोहरा।

0: गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब
1: धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब
0: धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन।

सच तेरे खन सच ब्रह्मण सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखिल करो सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच्चे हैं सच्चे जो मर जमे सो कुछ न तक महला पहला।

पहला सचा फर सचा बैठा सचा के अखियान कोई ना पिटे हो जाए सचा है के जे अलगा प्रसल कहती जाए सचा किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता न पंजवा पाया करते तहवा पाक पवित पापी सुतन गड़िया थुका पया